मिट गए नित नवा नरोआ दिन रैन नाम ध्याए दा फिर पाए न मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ किथों उपजे कह रहे कह माए सुमावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे अगम अगोचर साहेब दूसर लवे न लावे सज पूवे गुर उपदेसया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मोलिया आकाश घड़कड़ मोलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया अंत पाए जय देखो तै रहा समाए रहाओ द्वितीया मौले चार वेद सिमरत मौली स्योंक तेब शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहे हो सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तो जाइए।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर था।

आप गवादु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जुगदीसोरा मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा सारग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ हरहाओ हर कड़ कटे कड़ बसता हर जल तले हर बसता हर थान सनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मुए मार्ग दिखलावे तिस जन के हों मल मल थोमा पाओ हर जन को हर मिलया हर श्रद्धा ते मिलया गुरमुख हर मिलया मेरे मन तन आनंद पए मैं देख्या हर राव जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई मैं अनदनो साध साध सदा हर जपया हर नाव सारग महला चौथा जप मन निरपो सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी संप

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, इनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान। सृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक जो जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रीसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीस खोजत खोजत ए बिचार्यो सर्व सुख हर नामा कहो नानक जे पयो प्राप्त जाके लेख मथामा सारग महला पंजवा आनंद राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाशित फल लहिए रहाओ आओ संत प्राण सुख दाते सिमरे प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहे हो कटवासी गावत सुनत सुमावत सरदा हर्ष पीवड पागे कल कलेश मिटे सब तन ते आराम नाम लिव जागे काम क्रोध चूड़त निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अंग अन ममता गुर किरपा ते छूटे तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर किरपा जन तेरा पूरे ओ सर्व मैं ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याईए उपदेश हमारी गत करन अरहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरन आप जपे अवरे नाम जपावे वट समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊने को सुबर परन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जाको पयो किरपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन सारग महला पंजवा गायो री मैं गुणनिध मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो अरहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगते दर्श देख नैन।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहु विद उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्तव करता नेमख नेमख गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही। तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी।

तेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई। सारग महला पंजवां वह अवसर के हो बल जाई। आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रहाओ। भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जननाई। ऊच ते ऊच नाम दे सुमदरसी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन का यो मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवां मनोरथ पूरे सब

आग चले तिनी सुख पाया, जिसे गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं भाई, तिन साधु

खुल्यो कर्म पयो पर गासा काट काट हर हर डीठा रखाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राप चरणीठा सत संगत की रेन मुख लागी की ये सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाथे निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ कृपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मुए तेरी स्वामी और द्वितीय आस बेराथे नैन तृप्तासे दिग दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नारक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पय लाथे सारग महला पंजवा अरे मूड़े आन कहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिखाई रगाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विदाते तिस रुच नहीं राई मोन स्यों बाबर मन मोयो झूठ ठगौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बने आई सगल निदान करे मैं पाए कहो नानक जोत समाई सारग महला पंजवा ओ अंग प्रेपीत चीज पै लरिया जो तो बचन दियो मेरे सदगुर तो मैं साज सी गरिया अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बिसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर किरपाल नानखर मिलो तो मेरी सूख से जरिया सारग महला पंजवा मन ओए दिनस तन परवाना सबल ते करी संयोग सुहावे सदगुर संग ज्ञाना रगाओ तन सुभाग तन सुहागा तन दिल जिन माना यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख राज सुख पाए एक निमक पेख दिष्टाना जो कहो मुखो सेव के बैसिए तुग नारग अंत न जाना सारग महला पंजवा आप मोरो सहसा दुख गया और उपाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया अरहाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे अंग रोग सगल की खया और पराध खिन मैं खो पई है गुर मिल हर हर कह पंच दास गुर वस

तब मेरो एक पुत्र सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहाँ गुन गाई रहाओ, खेल खिलाए लाड लाड आवे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बार्ग की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई, कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सार्ग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याय रखाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे कर, तिस की सरणी पाइये, तिसे त्याग मानक जो सेव है, तो लाज लोन हो जाइये, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये, गुण निधान नांग प्रा मिलया,

जब भूखो तब भोजन मांगे अकाए सुख कनारे, तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवारे, कवन बसेरो ता दासन को।

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

पंजवा हर घर दियो सेवक को नाम, मानस का को बपरो पाई जा को रखा राम रहाओ। आप महाजन आपे पंचा आप सेवक कै काम, आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम। आपे पदरा की सेवक की आप कियो बंधान, आजुगा सेवक की रख नानक को प्रभ जान। सारग मोहल्ला पंजवा तू मेरे मीत सगा।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाए।

पंच दोख शिद्र या तरम है विखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत।

सेव करत अनसेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख लेहो दास अपने को सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। ज्यो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

आप सार्ग मोहल्ला पंजवा आतुर ना बिन संसार तृप्त न होवत उकरी आसा इत लागो बिखिया शार रगाओ पाए ठगौरी आप पुलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमखना सिमरियो जम कंकर करत खुआर ओ किरपाल दीन दुख भंजन तेरिया संतां की रावार नानक दास दर्स प्रव जाते मंत्र को आधार सार्ग मोहल्ला पंजवा मैला हर के ना बिन जियो तिन प्रसाते आप पुराया विखे ठगौरी पियो रगाओ कोड जन्म प्रम तो बो भांति हित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहजना पेटिया ताकत आवे जाई राख लियो प्रसमृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दा तेरी शरणाई पवजल उतरियो पार सार्ग मोहल्ला पंजवा रावण कौ राम के गुण बाद साध संग त्यागे परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रगाओ सिमृत एक अचूत अबनासी बिरसे माया माद सहज आनंद अनघ तुन बाणी बौर न पय दिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोर हर रस जप नानक हर बिस्माद सार्ग मोहल्ला पंजवा कीने पाप के बहुकोट दिनस रहनी थकत नाही कते नाही छोट रगाओ मां बजर बिख ब्याधी सिर उठ

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट। तिल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संघारियो, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट, सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ प्यार कुंट दैद सजल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जा पराम ना

गुण गाए बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सस दा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुमे पिछानू साग तुमे संग राखन हार तुमे जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति असार नरक उधर परमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही तम हो महा अंधार बेट खोरी खाए मुठो कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त हो रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा पुरु संत राखे।

मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सार्ग महला पंजवा तंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी खोजती दरसार रगाओ साधु संतन सेवक प्रयो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हो महल पावोगी काम करी सब त्याग कै हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हों गुरमनाब होगी सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमुख उपदिसया नानक सेव एक हरी सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू सारग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही काज कर्मना जात सही उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उधरे घर संत दास काट दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सगाई कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ तन धरणी पर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रगाओ का को तन तन संपत का की का स्यो निहो लगाई जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यो बादर की शाही तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया माद बिखे अरस रचियो आराम सरन नहीं आवे रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे मितया तान साचो कर मान्यो

कोड़ कल्प के दुख बिनासन, साध दृढ़ाए नंबेरा रखाव, क्रोध निवार जले हो ममता, प्रेम सदा नवरंगी, अनपो बिसर गए प्रो जात्या, हर निर्मायल संगी, चंचल मत त्याग पव पंजन पाया, एक शब्द लिवलागी, हर अचाख त्रिखा निवारी, हर मेल लहे बरपागी, अपारत सिंच परे सुबर सार, गुरमत साच निहला, मरत नाम रते ने केवल, आजुगा दयाला, मोहन मोह लिया मनमोरा, बड़े पाग लिवलागी, साज विचार केलब दो काटे, मन निर्मल अनरागी, गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पौ पंजन, अवर न जान्या दूजा, मनुआ मार निर्मल पचीनिया, हर सरते अदकाई, एक से बन में अवर न जानना, सदगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एक को जान्या, तुबर परे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया, गुर प्रसादी।

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेख सारग महला पंजवा अष्टपदिया कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय सुमावन सगर छत्रपद बीठा रखाओ राणा राओ राज पै रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटा जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कैद जेद पाहुच बेसुमार वर्षा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पावन परोयो सगल कारा पावक काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोई न किस ही संगे धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा जी जन सब पाछे करया प्रथम रिजक समाहा जो कुछ करना तू आपे करना।

जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए साह संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम अधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मै नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

होवै लिंग चिंग ने होवै ऐसी कहिए सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहिए मूर्त पौड़ी सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिद प्राप्त सो लहे गुर शब्दी मिलिया।

काम क्रोध तृष्णा उच्चर दसमी दसे द्वार जे ठक एकासी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत का रख तो नानक मन मान ऐसा वर्तर ही जे पांडे होर बहुत सिख क्या दीजे पौड़ी उब तरा जे रंग राय संचय बिख माया कर कर हेत बधाए दे पर दर्व चुराया पुत्र कलत्र ना विस है बहु प्रीत लगाया वेख दिया गई माया तोए गई पछते पछताया।

न पढ़ाए फगर करे होर जात गवाए गुर पीर सदाए मंगन जाए ताके मूल न लगिए पाए काल खाए किस हथों दे नान कराओ पछाणे से महला पहला मनो जे अंधे कूप कया बिरद ना जाननी मन अंधे उंधे कबल दिसन खरे।

आपे सृष्ट उपायन आप करे विचार नानक किसनु आखिए सा वरते आप सत्यार महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलिहारी तिन कौ जिन हर मनवस्या सोए पौड़ी आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन कौ चित गढ़ मंडप सवारिया वल वंच कर उपाव

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल।

पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तो देवे आप दयाल ना छपे छपाइया हिरदे कबल प्रगास उन मन लिव लाइया जे को करे उस दी रीस सिरशाई पाइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वड्याई है। श्लोक महला तीजा अमर वे प्रवाह है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुजत करनी जाए आप छोड़ सरणाए पवे मन ले रजाए गुरमुख जम डांडन लग गई होमे विचों जाए नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए महला तीजा दात जोत सब सूरत तेरी बहुत सियाणप होमे मेरी।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहे कबीर आराम पज बौरे जन्म।

माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे आत संचय समझे नहीं मूड तान तरती तन होए गयो तूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे कहत नाम जो ताची आन निरपय होए पजिए भगवान बदो की ना हो माधो मोस्यों ठाकुर ते जान जानते ठाकुर खेल परयो है तो स्यों रहाओ आपन देव देवरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जाल कहन सुन को दूजा आपे गावे आपे नाचे आप बजावे तूरा कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर जन ऊरा तू पूरा दास अनिम मेरो निज रूप दर्शन निमख तात्री मोचन परसत मुगत करत ग्रे कूप रहाओ मेरी बंदी भगत छिड़ावे बंदे भगत न छूटे मोहे एक समय मोको गए बंद तौ फोन मैं पो जवाब न होए मैं गुण बंद सगल की जीवन मेरी जीवन मेरे दास नाम देव जाके जी ऐसी तैसो ताके प्रेम परगास सारंग एक ओंकार सदगुर प्रसाद तय नर क्या पुराण सुन कीना आन पावनी भगत नहीं उबजी भूखे दान ना दीना रहाओ कामना बिसरयो क्रोध ना बिसरयो

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आयरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जुग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहोर ना पव जल फेरा। आपने पिर घर देख वेगासी, तौ तन साच सीगारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद

मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है, कीमत कहन ना जाए। गुर प्रसादी बुझिए सबदे कार कमाए, नानक नाम सलाए तू हर हर दर शोभा पाए। मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूझे, जिसनू नजर करे गुर बिन दाता कोई नाही, बगसे नजर करे गुर मिले सांत उपजे, अन दिन नाम लाए। मेरे मान हर अमृत नाम ते आए, सतगुर पुरख मिले नाओ पाईए, हर नामे सदा समाए। अरहाओ मानमुख सदा विछड़े फिरे,

प्राप नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया, वड्डी वड्याई होई। अन दिन गुण गावे नित साचे, सच समावे सोई। मान रहे गुरमुख हृदय विचार, ताए कूड़।

मन की बिद सतगुर ते जाने अणदन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए,

सगुर देख मेरा मन बिकस्यो जन घर पेट्यो बनवारी जगाओ। जिन ऐसा नाम सारया मेरा हर घर जिसके कुल लागी गारी हर जिसके कुल प्रसूत न करियो तिस विधवा कर्म है तारी हर घर आन मिलावो गुर साधु जिस अहिंस हर उर तारी गुर डीठे गुर का सिख बिकसै ज्यों बारक देख महतारी।

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, सुन लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहस्य, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवा, कानघर बरस सगल जग छाया। पय किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेश तृष्ण सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण निवारे, बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिलबे की, चरण कमल रस पीवन रखाओ।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तन होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा, दुष्ट मोए।

चित आवे, आड़ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हो मर जाए, पाने बक्स पाने दे सजाए।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गामनी नीकी रहाओ तोनत ललत गुनाग अंक पांत बहुविध रूप दिखामनी निकी गिर तार फल जल पावन परपुर कट कट लालन शावनी निकी साध संग रामैया रस पायो नानक जाके पावनी निकी मलार महला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेखेओ गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक सरण द्वारे मलार महला पंजवां बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो मिल संत

अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावे, सदगुर मिले ता सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावे, निर्गुण दे

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर घर नाम त्याए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने पाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के पाने सतगुर पेटिया सब जन्म सवारन हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके वेदां का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए नानक नामे ही पत उपजे हर सुरहां समाए मलार महला तीजा अष्टपदी

वेद पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सुवाया।

गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया छे भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना बिना विटो हो वारिया सलोक महला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै हो माने सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिसनू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतना लागे वार आडाणे आकाश कर खिनमें टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबद भंडार ओथे हथ न अपड़े ऊक न सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए ते सतगुर अगे कालिया होए न सके जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया।

सच्चे शब्द निहा लिया, नानक नाम निदान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा, वाह भी है हुगम पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए, मेघ वरसते दया कर, गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वस्या मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा, सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चातरक तू ना जान ही, क्या तुद विच तिखा है, किल पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया, अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा सुमाए पौड़ी। एक वाणखण बैसे जाए, साधना देव ही, एक पाला ककर पन्न, शीतल जल हेव ही, एक पसम चिड़ावे।

जन्म बिरतिया अंत न पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना पाया चले नाम सार तामन तत्या बल्दी अंदर तेल दुबदा कत्या।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

घर केरे हर कड़ राम रव्यो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे उग्र गए बिखिया के ताक। संत जिना की बहुत बहुत शोभा जिन उर तारे हर रसक रसाक, हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बशराक। हर के संत जिना में हर हर तेजन उत्तम जनक जनाक, तिन हर हिरदय बास बसानी छूट गई मुस्की मुस्काक। तुमरे जान तुम ही प्रव किए हर राख लियो अपन अपनाक। जन नान के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक। कानड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मान हर हर राम नाम जप चीत। हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर के शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या परम परम भो प्रम्या लो दो पुत्र कलत्तर मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुष छाया फिर मैं बिनस जाए दे पीत। हमरे प्राण प्रीतम जन उत्तम जिन मिलिया मन हुए प्रतीत। परते राम रविया कट अंतर अस्थिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू हर घर जाए मिले हर प्रीत। हम बो पाप किए अपराधी गुर काटे कटत कटीत। हर घर नाम दियो मुख औहद जन नानक पतत पुनीत। कानड़ा मोहल्ला चौथा जप मान राम नाम जगन्नाथ। घूमन केर परे बिख बिखया सतगुर काट लिगे दे हाथ। रखाओ स्वामी अपय निरंजन नर हर तुम राख लियो अंपा पीपाथ। काम क्रोध बिखया लोभ लुभते काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड़ पुरख वड़ अगम अगोचर हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ। तू परय परय परम पर स्वामी तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए सत संगत मिल साधु पाथ। हर घर कथा सुनी मिल संगत हर घर जप्यो अकाथ कथ काथ। हमरे प्रभु जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को प्रभु करो कृपा राखो जन साथ। कानड़ा मोहल्ला चौथा पड़ताल कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन जापो राम गोपाल हर रतन जवे हर लाल हर गुरमुख कर टकसाल। हार हो कृपाल रहाओ तुमरे गुण अगम

पूर्ण होवे आस। तानड़ा महला पनवा साध संगत निधर को नाम, संग सहाई जी के काम रखाओ, संतरेन नित मज्जन करे, जन्म जन्म के किल बिख हरे, संत जना की ऊंची बानी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रखाओ। ई पूत कहां लोभ आवे, एक स्यो मन लाए, मां पवित्र संत आसन, मिल संग गोविंद त्याय, सगल त्याग शरण आयो, नानक लेहु मिलाए। कानड़ा महला पंजवा पेख पेग बिसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रखाओ। आन दा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही भांत, सिमरत एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जांत। गुण रवंत दुख नस है, रिद पय अंत सांत, अमृता रस पीओ रसना, नानक हर अंग रात। कानड़ा महला पंजवा साजना संत आओ मेरे रहाओ, आनदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाए परेर, संत चरण तरो माथ है, चांदना गृह हुए अंधेर है, संत प्रसाद कमल बिकस, गोविंद भजो पेख नेर, प्रभ कृपा ते संत पाए, वार वार नानक ओ बेर। कानड़ा महला पंजवा चरण शरण गोपाल तेरी, मोह मान तो परम राख ली, जे काट बेरी रहाओ। बूढ़त संसार सागर, उदरे हर सिमर रतनागर, शीतला हर नाम तेरा, पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा, दीन दर्द निवार तारन, हर कृपा निध पतत उदारन, कोड़ जन्म दुख कर पायो, सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी, कोड़ जावता सुख पाए, आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ। मुए अनाथ दाह जन तेरा, अबर ओट सगली मुए त्यागी, भोर परम काटे प्रसिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाहो अद बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रतनागी, नानक जाचक हर हर नाम मांगे, मस्तक आन तरयो प्रापागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी, ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ। तू समरथ शरण योग, तू राखे अपनी कल तार, जाप ताप नेम सुसंजम, नाही इन विदे छुटकार। गर्त कोर अंध ते काढ़ हो, प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा महला पंजवा कार चौथा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए।

अनक पांध की एक जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला,

पंजवा साजन मीत सुवामी नेरो पेखत सुनत सबन कै संगे थोरे काज बुरो कै फेरो अरहाओ ना बिना जेतो लपटायो कशु नहीं नाही कज तेरो आगे दृष्ट आपत सा प्रगट ई गाम होयो परम अंधेरो अटक्यो सुबंता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एके पारु सो बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बिखे दाल।

संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जरा पंच भागे चोर सहज सुखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रघाओ जैसी करी प्रा मोह्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलियो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान एकता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

अधकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संत।

तू है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावै गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मन गुरमत चाल चलावै गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस

मुख उजला प्रधान, नानक गुर गोविंद हर, जित मिलघर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही सिद्ध साधको, तू आपे ही जुग जोगिया।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन

चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

आरुतम गर प्रव नाम है, गुरभजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जान नाव गुरु हर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, श्लोक महला चौथा, मन अंतर होम में रोग है, ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जां देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीश सर करते, अपरंपर पुरख अतोल।

रामा राम रामे अंत न पाया। हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गावे गुण गोविंद अंत न पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमाधो गुण गावे हर राया। तुम जल निध हा मीने तुमरे तेरा अंत न कतहू पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया। हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया। हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया। कहां पया दायत करीब खीली सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रव किए सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रव राखे जन नानक सर।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ एत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें समान जद कता तद पेखी है हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवां गुरु नानक।

रामो राम रवीजै, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजै। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोध पली सिवनी की, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

आत्म राम सब एक है पसरे, सब चरण तले सिर दीजे, ना बिना नगटे नर देखो तेन कस कस नाक वढीजे, सागत नर अंकारी कहिए, बिन नावे त्रिग जी वीजे, जब लग सास सास मन अंतर, तद बेगल शरण परीजे, नानक कृपा कृपा करता रहो, मैं साधु चरण पखीजे, कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तुवीजे, केल बेख दैन होए खिन अंतर, मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ, मंगत जन दीन खरे दर ठाडे, आतर सुन को दान दीजे, त्रागे त्राए सरन प्रवे आए, मुको गुरमत नाम जरडीजे, काम क्रोध नगर में सबला, नेत उठ उड़ जूझ करीजे, अंगीकार करो रख ले वो, गुरपूरा काड कढ़ीजे, अंतर अगन सबल अद बिगया, हे शीतल शब्द गुर दीजे, तन मन सांत होए अदकाई, रोग काटे सूख सवीजे, जो सूरज करण रविया सरबठाई, सब घट घट राम रवीजे, साधु साध मिले रस पावे, तत निरकर बैठिया पीजे, जन कौ प्रीत लगी गुरसेती, क्यों चकवी देख सुरीजे, निरखत निरखत रैन सब निरखी, मोह काढे अमृत पीजे, सागत सुवान कही गए बो लोभी, बो दुर्मत मैल परीजे, आपन स्वाय करे बो बाता, तेरा का वसाओ क्या कीजे, साधु साध सरन मिल संगत, जित हर्ष काढ कढ़ीजे, पर उपकार बोले बो गुणिया, मुख संत भगत हर दीजे, तू अगम दयाल दया पद दाता, सब दया तार रख लीजे, सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करीजे, कल्याण महला चौथा आरामा हम दसन दास करीजे, जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर पवीजे रगाव, शंकर नारद शेख नागमुन, तूर साधु की लोचीजे, पावन पावन पवित होए सब, जे साधु चरण तरीजे, तज लाज अंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे, तरमराए की कान चुकावे, बिग डुबदा काड कढ़ीजे, परम सूके बो उब सुग कहिए, मिल साधु संग हरीजे, ताते बेलम पल टिल ना कीजे, जाए साधु चरण लगीजे, राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखीजे, जो बचन गुर सत सत करमाने, आगे काड तरीजे, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बांह को पीजे, जे आत्म कौ सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे, जे बड़पा होए अतनीका, ता गुरमत नाम जरड़ीजे, सब माया मोह बिखम जगत तरीये, सहजे हरस पीजे, माया माया के जो अदकाई, विच माया पजे पचीजे, अज्ञान अंधेर महापंथ बिगड़ा, अहंकार पार लद लीजे, नानक राम राम राम राम, राम।

के कर्म नाही तर्म नाही नाही सुच माला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंत नाही सदगुरु फरमाई जा के आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बिख अमृत दो सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाय जोग।

मत सद पाए भगत गोविंदा, कीर्त कर्म कार निसंदा, अंतर रवतव अराज रवंदा, प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम उरतारी, दीना नाद पियो बनवारी, अन दिन नाम दान व्रतकारी।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर सबदी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मेरे संगत हर गुण जान, वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

क्रोध मिटे तस लोभा, नाम तेरा जन के भंडार, गुण गावे प्रभ दर्स प्यार, तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई, कार जेवरी जन लिए छड़ाई रहाओ, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिन रस आया सोई जाने, पेख पेख मन में हैरान, सो सुखिया

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जे गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

और ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा। सिमरत नाम किलभ सब नासे, सत नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

बिन नावे को साथ ना संगी, ज्यो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुर भेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सच शोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई, इस जग

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

हर मंदर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मानमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जीव साजिया, रख्या हुकम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, ओए ना मेटन हार, शब्द चीन सुख पाया, सच्चे नाए प्यार, हर मंदर सबदे सोना, कंचन कोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुर बिन को रंगधार, दूजा पाओ कर पूज दे, मानमुख अंध गवार, जिथे लेखा मंगिए, जिथे दे जात ना जाए, साजर ते से उबरे, दुहे दूजे पाए, हर मंदर में

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कड है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

का बचन तिन बंध्यो पाला कोड़ मधे कोई संत दिखाया नानक तिनकै संग तराया जे होवे भाग ता दर्शन पाईए आप तरै सब कुटुंब तराईए रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किरवग सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मेल हरस पाया पार ब्रह्म हृदमाय समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण शरणाया रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

आई, मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव, माने हाट माने पाठ माने है पासारी, माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी, गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमानी, सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी, जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी, नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी, प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया, सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया, गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया, रहाओ बावन भीखू बाने भीखे पालते सुख लागला।

सत्संग कल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है कूकर है सूकर है गर्द भय काक है सर्पण है तुल

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेश।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतः तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख

करुणा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तब संगे अधवंग नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक, सर्ब जी रखया क्रोत, ए लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जी आभो प्रकारं, अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता, तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सास समझया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक, हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है, आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण, परम भयान उद्यान रमणं मां विकट असाध रोगण है, पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक, हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है, करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है, दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय, तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, पय दुख विनाशन है, भगत वचल अनाथ नाथे करण नानक पुरख अचुत है, जेन कला धार्यो आकाशं पय संतरं काष्ट बेष्टं, जेन कला सज सूर नक्षत्र ज्योतिं तासं शरीर तारणं, जेन कला माद गर्भ प्रतिपालं नै छजंत जठर रोगण है, तेन कला अस्तंभं सरोवरं नानक नै छजंत त्रंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण तिमरणं सर्वत्र जीवन है, लब्ध्यं संत संगेण नानक त्वश मार्ग हर भक्तण, मस्कं पघनंत सैलं कर्दमं त्रंत पपीलक, सागरं लंघंत पिंगं तं प्रगास अंधक, साध संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक, हर हर हरे।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है संत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ पागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंज तस्तर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मदर मानुखयं हृदयंग पूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदं परम बादं अवर तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतं बलवंत बलाद कारण है चरण कमल न पजंत तरण समान तिग जन्मन है हे पपीरता ग्रस्ते गोविंद सिमरण तोयंग तने नानक अनकबार नमो नमे तिरणंगता मेरंग सैकंगता हरियंग बूढ़ंगता तरियंग ऊणंगता परियंग अंधकार कोल सूर उजारंग विनवंत नानक हर गुरदयारंग ब्राह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्म रतंग संसार गहंग ते नर नानक नेफल पर दर्द हेरणंग बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्वजीत है लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माय कर्म कर्त सूकर है मते समेव चरणं उदरणं पय दुत्तर है अनेक पातक हरणं नानक सा

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोईज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

अर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इउं कहे रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया,

क्या करे जो राम न करे सहाय। जे जे डाली भगत रो सोई मुर मुर जाए। कबीर अवरे कौ उपदेश ते।

आवे दज होत है निर्दावे रहे निशंक। जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

सिमरन जो कर सो सुखिया संसार। ए त्युत कभे ना डोलई जिस राखे सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते।

तोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजयो ना खत फटयो, काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कूकर पौंकना तरंग पिछे उठताए।

सुरापान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सब खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी।

पियो बूझो नहीं, खड़ में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे। अर्ज उर्ज के

पुछई तन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही

तू साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन बिरो ना उपजे तो तन जान मसान फरीदा एफस गंदला धरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार परे ही ते परे अपर अपार पार अपनु भावन कर मंत्र ना दूसरो धर उपद परलो एक नेमक तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूरे ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत न ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कम उपमा देओ बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थान जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सते सत पणिये दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिये अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दी बाण सच सच्चे पै तरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार की मनो पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसन काद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बरयो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़ कठोर कुचील कुग्यानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया बद माता विचरत बिकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेठत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर रख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जो हुन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरत सबे बेद कुले समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान संगत परम अंधेर मोयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संग लो होशो काज अल्प सुख बंधन कोड जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यो रो रंचक रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी खान पान सुधे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आप तो निकट दिखा मजरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुध बंता साजन सुख बंधप ताश्यो मुह बड़ेओ सो खना बोयो बीज अंग मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना एहन गेहन ने नानीत माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जाको फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सर परया। ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया। तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा। सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे। सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे। मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो। दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो। सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने। सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने। नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कल उच्चरै ते अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश। मिलत सा उपजै

सदगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस दूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

सदगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नहीं संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपर पार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुगते भय सतगुर शब्द

जाको देखत दरिद्र जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो, सतगुर नाम एक ले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म कर्म पूरे।

कार तल्प कार मन गए अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसदा सलामत कहे न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत तिन को मोह भया मन मद का 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू कौ तद का सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जाल आपे थल थमन आपे किया कड़ कड़ बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे विचार हो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहेगुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना मन ब्रह्माद क्रुद्राधक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ तत्संगत स्थिति मन खजना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आज कोय न जाने शिव ब्रंतर ध्यान नित्य जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गण समत तरन तारन प्रसोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्ते बसे गुरु समरथ गय करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कहो हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कहो मथुरा जन जान कई जी साच तो और कछु ना विचारन कहो हर ना भूत बड़ो कल मैं अव सागर पार उतारन कहो संत की सत संगत संग

आग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुद को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद हृत नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कवक को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन स गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर गात तेज पुंज ते लोक प्रगास। देखत दर्स पटक प्रम भजत सुख परहर सुख सहज बेगास। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिदर सिद्ध न छोडे सत। दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तत। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरहत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नी अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नी संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुपुत हर के जोगण। अम्बरीक जय देवतर लोचन नामा अवर कबीर पण। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जगतर परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। मनसा का स्मरण तुझे नार काम क्रोध मिट्यो जो तिण। वाचा का स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल पड़ जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय हर परम पद पायो। जे सदगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खेन। जे सदगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सदगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे। जे सदगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। तोई रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो। जे सदगुर लग प्रा पाई है तो सदगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास। ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कल कीर्त जो संत चरण मुड़ लग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुर रामदास। जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रगट सुवास। रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लय उपजो जो परगास। जे पिकत अत होय रहस्यमान तोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानेओ इन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव
ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਥੋਡੀ ਸਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਏ ਫੂਲੇ, ਸੁਧ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤੋਂ ਪੰਥ ਸੁਣਿਉ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਮੋਹ ਮਲਬ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਤ੍ਰੁਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਮਾਨ ਸਿਉ ਚਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ, ਸਿਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਿਰ ਆਦ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ, ਜੋਗ ਪੁਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜ ਸਲ ਪਾਣ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗਦਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ, ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਹੈ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ, ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ, ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ। ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ, ਹਾਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ। ਬੜਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸਬਦ ਬਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇ, ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਬ ਤੀਜ ਪਤੀਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ, ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ। ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ। ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਵਿਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ। ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉ, ਅਗੇ ਗੈਣ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਯੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੋ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰਸੈਤਾ। ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੁਝ ਜਸ ਭਗਤਾ। ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਨ, ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਘਰ ਭਗਤਾ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਸਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅੰਗਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ। ਮਹਾਂਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਖੁਟੈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬਮੈ, ਤੈ ਚਿੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਿਓ। ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ। ਅਗਮੈ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਰਾਜਮੈ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਬਰ ਫਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ,
अलख अपार पुरसूर शब्द होमे निवार्यो पंचारण दलयो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उदरयो सब गुरदे बसायो गुर अर्जन कल उच्चरै तै जन के कलश दीप पायो सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पारथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संघेत नाम लाग जग उदरयो जगते उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत सो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आद पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बस रैन बास जा कोहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग गयो बे भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जुन गोर भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासव योग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सिट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माए करी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चू कह रे मन भेद भेद न जान पियो पर तचर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदय

अवतार जहे मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भजन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मै जो स्वरूपी रहो पर पान मसरा कछ पेद रही गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेविए मन तन जुज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग उला दैत न समझई इन पव की ये काम नानक वे प्रवा

तीरनी करे से अपा रोवन कूड़ी कमी। जो ले रे सो देवे नाही खट्टे दम सहमी। पब्बर तू हरियावला कवला कंचनवान। कहे दोखड़े सड़े ओहे काली होइया देवरी। नानक मैं तन पंग जाना पानी ना लगा जैसे ती मेरा संग। जिद डिठे तन पर फड़े चढ़े चवगन वन। राज न कोई जीवे पहुंच न चलिया कोए। ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पद होए। सरफे सरफे सदा सदा ए वह गई वेहाए। नानक किसनु आखिए विण पुछिया ही ले जाए। दोस ना दे और आए नू मत चले जा बुढ़ा होवे। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती टोवे। पूरे का किया सब कुछ पूरा कट वध किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माए समाही। सलोक महला तीजा एक ओंकार। सदगुर प्रसाद अभ्यागत ए ना आखी है। जिनके मन में परम जिनके दिते नानका ते हो जेगा धर्म। अपए निरंजन परम पद ताका भीख होए। जका भोजन नानका विरला पाए कोए। हुआ पंडित जोध की

ना पदार्थ पाया अटुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गलिया ए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाए नौ से मन आई नांग से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल है शब्द न काढ़े धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हो सब बलगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखमाए देखा मारण हर नाम है गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए मिल सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है निद हिरदे घर लिवलाए निर्वैरे नाल वैर रचाएगा अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अनदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल निद पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से ऊबरे बिन नावे जमपुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताव तरे गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेट्या गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह सुमाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन हम सत कुरबाने जाओ लग चौरासी मेदनी इसना जलती करे पुकार यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ, ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ, ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਭ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਜੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ।

जे आन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना पिरी प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एव मन रहसी है, जिन्ना पिरी प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है, आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

वे बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए कुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गाव है पांचो संग बरंगन लाभ है बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पछे सिंधवी अलापी श्री राग सो पांचो थापी सालू।

दूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

को कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरमो पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार। कुदरत कौन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बढ़ात्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सर करह भार, नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण, वखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिंदन करकै कीती रात, खसम सार ते कम जात, नानक नामै बायसनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे, जन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता साय, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वै उदम।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन्ना मृतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर की

निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग श्री राग महला पहला, कर पहला। मोती ता मंदर उस रह, रतनी ता होहे जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चित ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया। अवर नाही थाओ राओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सो है, करे रंग पसाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चेतना आवे नाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखे पाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चेतना आवे नाओ। सुल्तान होवा मेल लस्कर, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चेतना आवे नाओ। श्री राग महला पहला, कोट कोटि मेरी आरजा। पवन पीण पियाओ, चंद सूरज दोए गुफै ना देखा।

सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार। जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तन मेट ना सकै कोए। ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजिय नाउ मनिय, अखंड सदा सच सोए। खेहू खेर लाइय ता जियो केहा होए, जलिया सब सियाणपां उठी चलिया रोए। नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो पैने गल मिले है अंक सहे लिड़िया, मिलके करे कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी, केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जय उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए रहाओ, केता आखण आखिए आखण तोट ना होए। मंगण वाले केतड़े दाता को सोए, जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए। जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए। ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईए मुक्त पदार्थ तेण रहाओ। ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईए दर कर महल प्यार, गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए, क्यों गुरबिन तृप्ति छुटसी सहज मिले सुख होए। निज कर महल पछाणीए नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहारे जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना थिए पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर रहाओ, आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान। पहला तरती साध कै सच नाम दे दान,

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दिया मरमार। अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनाश।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कस वट्टी लाई है तुलिया पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिदमान कमोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर तन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस होर कित

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणंजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाह अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी राणा,

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझै समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाहीं भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दुइ मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाहीं, अनगन दुख विहाणी, मन मुखे अंध न चेतही, डूब मोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मन मुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जप जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सुहाग।

अंतरों दुख भ्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चले, दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावै कोई, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए, नानक गुरमुख नाम त्याई है, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना है अपना, तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया, से ही कर्म करे, सहजे सच मिलावड़ा, सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर

आओ आपे जग जीवन सुदाता आपे बख्श मिलाए जी जानते क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ाई आपे सेव कराए दे कुटा मोए लोभाना चलद्या नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मित प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप ना जाई हर जो दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निधान मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलया गुर शब्द ही साला ही है रंगे सह सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे ना विछड़ जाए जो कुछ करना सो कर रहा अवर ना करना जाए चिरी विछुने मेले आनो।

आए, मन मुख जन्म बिरथा गया क्या मोदेसी जाए, सब किश आपे आप है हउ मैं विच कहन ना जाए, गुर कै शब्द पछाणी है दुख हउ मैं विचों गवाए, सतगुर सेवन अपना हो तन कै लागौ पाए, नानक दर सच्चा है सच्यार है हउ तिन बलहारै जाओ, श्री राग महला तीजा, जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए, अंदर न मेरतिया सचे सची सोए, एक तिल प्यारा विसरै भगत कने ही होए, मन तन शीतल साच सियो सास ना बिरथा कोए, मेरे मन हर का नाम ते आए, साची भगता थी है जा हर वसै मन आए, रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज पाए, खेती जमी अगली मनुआ रजा सही सुभाए, गुर का शब्द अमृत है जित पीता है तिख जाए, एहो मन साचा सच रता सचे रहा सुमाए।

दूजे पाए प्यार, माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमति सुख पाईऐ सच नाम और धार, जिसनों मेले सो मिलै हौ तिस बलिहारै जाओ, ए मन भगती रतिया सच बाणी निज थाओ, मन रते जिह वरती हर गुण सच्चे गाओ, नानक नाम ना विसरै सच्चे महे समाओ, श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहवा त्यागला, क्यों प्रीतम मिलै घर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सज्जना प्रभ कित बिद मिलै मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुक्त शरणागति कर कृपा मेले हर सोए, रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभु आ मिला वै सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड़े अवर ना कोए, हाँ गुर शरण आई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए, मन अठकने ना पाया कर उपाव थके सब कोए, सहस सियाण पकर रहे मन को रह रंग न होए, कूट कपटकने ना पायो जो बीजै खावै सोए, सबना तेरी आस प्रभ सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो साबास, बिख पाओ जल डुब दे कढ लै जन नानकी अरदास, श्री राग महला चौथा नाम मिलै मन तृप्ती है बिन नामै त्रिक जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै मैं दसे प्रभ गुणतास, हाँ तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हाँ जीवा नाम ते आए, बिन नाम है जीवन ना थी है, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोल करतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर से वह लग्या कड रतन दे वह प्रगास, धन वड भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पवाई है विच विष्टा कर विकराल, ओना पास दवास ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सार वड भागी ना वै आए, उन जन्म जन्म की महल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लिव लाए, श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरा हीर मिल बेदया रंग चलूलै नाए, मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावै सोए, रहाओ मन रंग हो वड भागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यों हम सतगुर कै बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लभई लख कोटी कर्म कमाओ, बिन भागा सतगुर ना मिलै घर बैठिया निकट नित पास, अंतरा ज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस, बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहे थार नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर कह पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिन्ना सतगुर ले मिलाए, श्री राग महला चौथा हाँ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिन्नी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ, कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं परम मिलने का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए, हाँ सतगुर विटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए, रहाओ होए निमाणी टह पावा पूरे सतगुर पास, निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे साबास, हाँ गुरसा लाहे नर जऊ मैं मेले हर प्रभ पास, सतगुर नो सब को लोईदा जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी है भागहीन बैरोए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोए, आपे सतगुर आप हरो आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है
नानक जल जलै समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिलै रस खाए। जाय पुछो सोहागणी, तुसा क्यों कर मिलिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढाए। श्री राग महला पंजवां। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया।

इको विसरना जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाहे कै इका आस कमाओ। जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाणपा गुर की पैरी पाहे रहाओ। दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए। किथी कम न छिजिए जा हृदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोए। सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डे धोए। सेवा मंगे सेव को लाइया अपनी सेव। साधु संग मसक दे तूठे पावा देव। सब किश वसगत साहेब है आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहारन है मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत। इक सह दी सामग्री इक सह दी है रीत। इक सस्यो मन मानिया ता होवा निचरचीत। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। श्री राग महला पंजवां। सबे थोक प्राप्ते जे आवै इक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवै मथ। मेरे मन एक सस्यों चित लाए। एक बिन सब धंद है समिथ्या मोह माए रहाओ। लख खुशियां पात साहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिस तौ पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए। सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी तिस

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराध्य।

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

जैसे रण प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रताग्रत स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़, लख चौरासी परम त्या दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवा, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया तां तनखा कूराल। मन बैराग पाया दर्शन देखने का चाओ, तन सो तेरा थान रहाओ, जिचर वसया।

कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दो कृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुरो सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वट पुरख सुजाना रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत कश नजर ना आया।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए, जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए, कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए, पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद, शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद, बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद, पुछ ना साज

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सात अन रंड ना बैसई जे सतगुर महे

संत सभा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाणै रव रहै ना तिसकाल संताए साहेबा तुल ना तोलिया कथन ना पाया जाए वा पारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै र जाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइय रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाइय सर प्यार मुक्त पदार्थ पाइय अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहार जाओ। अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभु, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला।

श्री राग महल्लाती जा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिर समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके पेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भगति उपजै सहज पैर प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए मनमुख कर्म कमावणे हम मैं जलै जलाए जमन मरण ना चुकई फिर आवै जाए त्रेह गुणा में सहज ना पाई है त्रै गुण परम भुलाए पढ़िए गुणिया क्या कथिए जा मुंडो कुथा जाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपीसर योगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चित ना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, सोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नवै प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

जा रहा मित्रा तन जो बन सो चेत हर का नाम ना चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुट्टै जित हर का नाम ना चेत प्राणी बिकल भया संग माया तन स्यों रता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म से ती व्यापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक तीजै पहरे प्राणी तन जोबन स्यों चेत चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुकन हुआ दुआले खिन मैं पया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत।

मात्र पिता सुत ने हुकनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानके स्वामी धारा अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखणा सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो विसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म नहारी है। नानक की बेनंती प्रप है कृपा कर पव जल तारी है। डखना तूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े। नानक हर तन मालो शंत सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम। आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान। सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते। बिखे बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे। साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे। हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा। जप जप नानक जीवते। डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिलियो है आपे ही आप मोयो हो जस नानक आप सुनियो है। संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो। संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो। हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए। मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए। सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौल ना माया होहया। कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया। डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। शंत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो। जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी। कर गए लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया। कथ ना जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो। हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए। जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए। मैं हर बने अवर ना कोए हर गुर सरण आई पाई है। मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए। रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ। विच हों मैं कर्म कमाव दे ज्यो वेसवा पुत निनाओ। पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वडभागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ही के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निचल मत अपार। रतने मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल इक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर

मिल मेरे रमैया मैले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्त है ना परवेसं। माया मोह ता बिसर गया, जा तजी अले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ। तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर लै मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सन ओरे पंडिया। अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जन मोहे। त्रिभुवन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजै। जाकी दृष्ट नाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कालक कनक कर सिक पाया। तिसमै तार चोवै त निर्मलो, रसमै रसन चुवाया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया।

और दुनी सौ परम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पहरिया कै घर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे नर गर्भ कुंडल जब आशत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मदना अहनस एक अज्ञान सो नागा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तव नरहर मनो बिसारिया। फिर पछतावेंगा मूड़िया तू कमर कुमत प्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा। रहाओ बाल बिनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे ब्यापै रस में समेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत आ लागी तो वाण सकत गल बांधिया। तरन तेज पर त्रे मुख जो है सारे अवसर ना पछाणिया उनमत काम महा बिख भूलै पाप ना पछाणिया। सुत संपत देख एहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया अवर मरत माया मन तोले तो भाग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसमते तौले सबत पाताल की बाणी लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी। ता ते बिखै पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना। निकुटी देह देख तुनि उपजै मान करत नहीं बूजै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूजै। थाका ते जुड़िया मन पंखी कर अंगन ना सुखाई बेणी कहै ए सुनो रे भगतो मरण मुक्त किन पाई। श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जाओ पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जनते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रामदास समदालो समझावै को। राग माज चौबदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स भंगुर प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपुरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर चलया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावै मेरे प्राण जीवाया। हव रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह वह चलै जियो सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई हव रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेला जन नानक हर तन पलै जियो। माझ महला चौथा मधसूदन मेरे मंत्र प्राणा हो हर बिन दूजा अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिलै वडभागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। हो मन तन खोजी पाल पाल आई क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई वे संगत हर प्रभ वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जलमल कमल वसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै मेरे मन तन वेदन गुर बिरव लगावै। हर हर दया करो गुर मिलो जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माझ महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा
मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरी है जियो। मेरी वेदना हर गुर पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने। मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरी है जियो। हम चात्रक दीन सदगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई। हर जल लेदो हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो। माझ महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते। मिल हर दर्शन मन पी जय जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी। हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावे। मिल सतगुर अमृत पी जय जियो, वड भागी हर संगत पावे। भागहीन परम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लभे। बिन संगत मैल भरी जय जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया। जन नानक नाम मन भीजे जियो। माझ महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया। मन हर रंग राता हर रस पी आया। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टोल टोल पौंदा जियो। आवो संत मैं गल मिलाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो। वड भागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया। भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रभ धारी, मलहम मैं बिखिया सब निवारी। नानक हट पटन विच लकाया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो। माझ महला चौथा, हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई। मेर संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगमा गोचर स्वामी। मेर सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता। जाए पुछा जन हर की बाता, पा मलोवा मल मल तोमा। मिल हर जन हर रस पी चै जियो, सतगुर दाता नाम दिड़ाया। वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली। गुर पूरे अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सतपुरख मिलाई है। मिल सत संगत हर नाम ते आई है, नानक हर कथा सुनी मुख बोली। गुरमत हर नाम प्रीचै जियो। माझ महला चौथा, आवो पैणे तुसी मिलो प्यारिया। जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हों वारिया। मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन, हों सतगुर विटों घुमाइया जियो। जै जै देखा तै तै स्वामी, तू घट घट रव्या अंतर जामी। गुरपूरे हर नाल दिखा लिया, हाँ सतगुर विटों सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया। सब एका जोत वरतै भिन भिन, ना रलई किसे देर लाइया। गुर प्रसादी एक नदरी आया, हाँ सतगुर विटों बताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी, गुरसिखा कै मन प्यारी पाणी। उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर उपकारिया जियो। सत चौप दे महले चौथे के, माझ महला पंजवा। चौप दे कर पहला, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई। बिरप करे चा तिर की न्याई, त्रिखा न उतरै सांत न आवै। बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कुमाई। गुर दर्शन संत प्यारे जियो, रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो। सहि तुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी। धन सो देस जहां तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हाँ कोली हाँ कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। रहाओ एक कड़ी ना मिल।

अमृत वर्ष है अनहद बाणी मंत्र अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सदगुरु किया दिलासा जियो जिसका साव तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आमन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो जिसके सेत नहीं प्रतपारे पार ब्रह्म प्रपय रखवारे सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्ब जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नगर निहारा जल थल महियल सब त्रिपताने साधु चरण पखाली जियो मन की इच्छ पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख भंजन रते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार कमावा जे तुद पावा जा तू देह दयाला जियो प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जो तू देह सोई सुख सहना जिथे रखे बैकुंठ तथाई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रग मेघ पठाया जल थल मैयल उदय दिस वरसाया सांत पई बुझी सब तृष्णा अनद पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले पै पैरी तसै मनाई जियो जाकी सरन पयांगत पाई है सा सा सर नाम ते आई है तिस बिन होर ना दूजा ठाकरो सब तसै किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहेब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आठ पहर तो त्याई जियो माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहे मेरा कड़कड़े अंतर वर्तै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाणे जियो प्रभ मृण की हे निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु ना जापे अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जी वै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते

जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंदर जागी, बाहां पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे, विन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है, जिस मृतवार ने चल पाई है, नानको प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावने आ रहाओ। ना को मेरा हो किसकेरा, साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हो मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछो तावने आ। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण, गुर कै शब्द नाम निशाण, सबना कादर लेखा सच्चै, छूटस नाम सुहावने आ। मनमुख पूला ठावर ना पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवने आ। सागत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे, लिखिया लेखना मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावने आ। पे येड़े पिर जा तो नाही, झूठ विछुनी रोवे ताही, अवगण मुठी महल ना पाए, अवगण गुण बख्सावने आ। पेयड़ जन जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत बिचारा, आवन जाना ठाक रहाए, सच्चा नाम समावने आ। गुरमुख बूझे कथ कहावे, सच्चे ठाकर साचो पावे, नानक सच कह बेनंती, सच मिले गुण गावने आ। माज महला तीजा कर पहला, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हाँ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावने आ। हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ, गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदर हर गुण गावने आ। रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए, तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावे, सहजे पद करावने आ, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावने आ, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता, दर सच्चा सो जी पावने आ। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंदा मग न जाने, फिर आवन जावने आ। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हाँ मैं मेरा ठाक रहाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावने आ। हाँ मैं मार मन वसाया, गुर चरनी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई, जिस बख्से तिस दे वड़ियाई, नानक नाम ते आए सदा तू, जम्मन मरण सवारने आ। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगमिया पारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख होवे सोई बुझे, गुण कै गुणी समावने आ। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने आ। जो सच लागे से अंदन जागे, दर सच्चै सोभा पावने आ। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै, जिसनों नदर करे सोई जन लेखै, आपे लाए लए सो लागै, गुरमुख सच कमावने आ। जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी, पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ तन अंदन सुती, कंत विसारी अवगण मुत्ती,
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈਅੜ ਐਸੁ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੰਪਰ ਬੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੀ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤ

हर जियो तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शै दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ न आवै, जो हर हर नाम ते आवणिया। आंदन राते जो हर पाए, मेरा प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच वखाणे, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया। माज महला तीजा, शब्द मरै सो मोआ जापै, काल ना चापै दुख ना संतापै, ज्योति विच मिल जो समाणी, सुन मन सच समावणिया। हां वारी जियो वारी, हर कै नाए सोभा पावणिया। सतगुर सेव सच तलाया, गुरमति सह समावणिया रहाओ, काया कच्ची कच्चा चिर हंडाए, दूजे लागी महल ना पाए। आन दिन जल्दी फिरै दिन राती, बिन फिर बहुत दुख पावणिया। देही जात ना आगै जाए, जिथे लेखा मंगिया तिथे छुट्टै सच कमाए। सतगुर सेवन से तनवंते, एथे उथे नाम समावने आ। पै पाए सिंगार बनाए, गुर प्रसादी महल घर पाए, आंदन सदा रवै दिन राती, मजीठे रंग बनावने आ। सबना पिर वसै सदा नाले, गुर प्रसादी को निदर निहाले, मेरा प्रभ अत उचो उचा, कर कृपा आ मिलावने आ। माया मोहे एहो जग सुता, नाम सारे अंत विगुता, जिसते सुता सो जागाए, गुरमत सो जी पावणिया। आपियो पीए सो भरम गवाए, गुरप्रसाद मुक्तगत पाए, भगती रता सदा बैरागी, आप मार मिलावणिया। आप पाए तंदै लाए, लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए, नानक नाम त्याए सच राते, जो तिस पावै सो कार करावणिया। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच वखाणै, सच कसवटी लावणिया। हाँ वारी जियो वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन महि निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया। रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम्या पारा, गुरमुख होवै सोई पाए, आपे बख्श मिलावणिया। मेरा ठाकर सच दरड़ाए, गुर प्रसादी सच तलाए, सचो सच वरतै सबनी थाई, सचे सच समावणिया। वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा, किल विख अवगण कट नहारा, प्रेम प्रीत उसदा त्याई, पै पाए भगत दरड़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावै, आपे देना पछोतावै, सबना जिया का एको दाता, सबदे मार जीवावणिया। हार तुद बाजाओ मैं कोई नाही, हर तुदै सेवी तै तुसा लाही, आपे मेले हो प्रभ साचे, पूरे कर्म तू पावणिया। मैं होर ना कोई तुदै जेहा, तेरी नदरी सीस देहा, अंदन सार समाल हर राखै, गुरमुख सह समावणिया। तुद जेवड़ मैं होर ना कोई, तुद आपे सिरजी आपे कोई, तू आपे ही कड़पन सवार, नानक नाम सुहावणिया। माज महला तीजा, साब कट आपे पोगनहारा, लख वरतै अगम्या पारा, गुर कै शब्द मेरा हर प्रभ त्याई है, सहजे सह समावणिया। हाँ वारी जियो वारी, गुर शब्द मन वसावणिया, शब्द सूजै ता मन सो लूजै, मनसा मार समावणिया। रहाओ पंच दूत मोहै संसारा, मनमुख अंधे सोधना सारा, गुरमुख होवै सो अपना घर राखै, पंच दूत शब्द पछावणिया। एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राते, सहजे प्रभ सेवै अंदन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावै, हर दर सोभा पावणिया। एकम एकै आपो पाया, दुबदा दूजा तिरबद माया,
ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉੱਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਜਿਨ ਸਾ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਗੁਰਮ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ ਸਾਚੇ ਜਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ ਸੱਚੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਆ ਦੂਜੈ ਲਾਗ ਜਗ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪੇ ਧਰ ਦੇਖੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਆਂਦਨ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ ਸਮੈ ਆਪਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚੱਖ ਡੀਠੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਾਵੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤੁਦ ਸਾ ਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜਾ ਕਬੂ ਸੱਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਣਿਆ ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰਨਾ ਬੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਾਗੈ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਭੈ ਅੰਦਰ ਭੈ ਮਾਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਣਿਆ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਤਤ

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सालाही सच्चै मेल मिलावणिया हाँ वारी जियो वारी सच सालाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन निचलो निज कर वासा पावणिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै ओहो अगमे अगोचर शब्द सुध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नह चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पाए न, गुरमत मन वसावणिया। हाउ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरा मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउं जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मेला बणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आ मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण

नामो मन सुख पावणिया। माज महला तीजा, निर्गुण सगुण आपे सोई, तत् पछाणै सो पंडित होई। आप तरै सगले कुल तारै, हर नाम मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर रस चख साध पावणिया। हर चख ऐसे जन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ। सो निह कर्मी जो शब्द बिचारे, अंतर तत् ज्ञान हों मैं मारे। नाम पदार्थ नौन पाए, त्रैगुण मिट समावणिया। हों मैं करै निह कर्मी ना होवै, गुर प्रसादी हों मैं खोवै। अंतर विवेक सदा आप विचारे, गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगै नित गुरमुख होई। इसनान करै सदा दिन राती, हों मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर्वसै हों मैं मार। अहनिस प्रीत शब्द साचै, हर सर्वसा पावणिया। मन मुख सदा बग मैला, हों मैं मल लाई। इसनान करै पर मैल ना जाई। जीवत मरै गुर शब्द विचारे, हों मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया, पूरे सतगुर शब्द सुनाया। गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, कर चानने आप पछानणिया। आप यो पाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सोजन लेखै। नानक नाम वसै कट अंतर, गुर कृपा ते पावणिया। माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया, त्रैगुण दिसै मोहे माया। गुर प्रसादी को विरला बुझै, चौथे पद लिवलावणिया। हाँ वारी जियो वारी, माया मोह शब्द जलावणिया। माया मोह जलाए सो हर स्यों चितलाए, हर दर महली सोभा पावणिया रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत शास्त्र जिन उपाया। काम क्रोध पसेरा संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन एक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया। जत सत संजम सच कमावै, गुरपूरे नाम ते आवणिया। पेयड़ तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी। हलत पलत दोवै गावाए, सुपने सुख ना पावणिया। पेयड़ तन कंत समाले, गुर प्रसादी वेखे नाले। पिरकै सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया। एको रव रहया कट अंतर, मिरसा संगत हर गुण गावणिया। सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया। मन मुख नाम चेतना आवै, बिन नावै बहुत दुख पावणिया। जिन सिष्ट साजी सोई जाणै, आपे मिलै शब्द पछाणै। नानक नाम मिलिया तिन जिन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपरयापे, आपे थापे थापो थापे। सब मैं वरतै एको सोई, गुरमुख सोभा पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, निरंकारी नाम ते आवणिया। तिस रूप ना रेखिया, कड़ कड़ देखिया, गुरमुख अलख लखावणिया रहाओ। तू दयाल किरपाल प्रभ सोई, तुद बिन दूजा अवर ना कोई। गुर प्रसाद करे नाम देवै, नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भगती परे तेरे भंडारा। गुरमुख नाम मिलै मन भीजै, सहि समाद लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे, तुसा लाही प्रीतम मेरे। तुद बिन अवर ना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणिया। आगमया गोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करै तू लह मिलाई।
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਜੁਵੈ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੋਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖ ਤੁਰ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰਖਿਆ, ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਕਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਧਾਰੇ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ, ਰਹਾਓ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਏ ਨਿਹਿਰਦੇ, ਕੋਟ ਤੀਸਾ ਖੋਜੈ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਗੁਰਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਦ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ, ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਪਾਵਣਿਆ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਚਿਆ ਗਾਵਣਿਆ, ਤਿਸ ਘਰ ਸਹਿਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ, ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ, ਸੋ ਧਨਵੰਤ

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुलतारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है इको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। अपन लिया जे मिले विचड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास। दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनके सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागनी।

मन आठ साठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माघ सुचे से कांडिय जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुनी वड़ भागनी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सवारयों नि चलो दितियां न जाए संसार सागर ते रखियान बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस भावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र ने अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभु को सेव दे तिन कह सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जपहरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवन आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानके हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मुयाना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी।

दिसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए पढ़िए समर्थ पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास, चौने सोई ना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला, कहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती तुटे पतार, पुत्री गंड पवे संसार। राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंड पवे जा खाए, काला गंड नदिया मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोह मार, नानक आखे हो बिचार, सिफती गंड पवे दरबार। पौड़ी, आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार, खोटे सच्ची दरगह सुटी है किस आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साध का तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे देहांद आदमी, ना सबत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन्न पौन थिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंदे ना ग्रह जर, दरख्त आव्यास कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सके कोए, कला तरह हरै सुई एक तुई पौड़ी, सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया, विष्टा अंदर वास साधना जानिया, विण नावें दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंह बाजा चरगा कुहियां, इन आखवा

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला एक मांसाहारी एक तरण खाए एक नाशती अमृत पाहे एक मिटिया मैं मिटिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कारे लग जन्म गवाई है विणना में सब वेस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाई विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा साला है पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला तुद पावै ता वावै गावै तुद पावै जल नावै जा तुद पावै ता करै बेपूता सिंगी नाद वजावै जा तुद पावै ता पड़ै कतेबा मुल्ला सिह कहावै जा तुद पावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुद पावै तेग वगावै सिर मंडी कट जावै जा तुद पावै जाए दसंतर सुन गल्ला कर आवै जा तुद पावै ना इरचावै तुद पाणे तू पावै नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप। पौड़ी सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है। लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दह दर जाए सच चमाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़िया मावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। हाँ पाल विकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई विच हम मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बेदगत होई। महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरम कोई उतरे पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगता तै सह सारिया जोड़ कदे ना आया करता आपा भुल है ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलिया न जिनी सचो सच कमाया संसारी आप खोआया न जिनी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिनी अंदर नाम ते आया। दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया उना खसमै कै दर मुख उजले सच्चे शब्द सुहाया। सलोक महला पहला साबाही सालाहा जिनी त्याया एक मानो सेई पूरे साहा वक्त उपर लड़ मोए।

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हाँ मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुरबीर चौथे पैर सुबाह कै सुरतिया उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नदर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला।

पाई है, सच्चा सबरी सान ठाक ना पाई है, ससुण बुझ बखान महल बुलाई है। श्लोक महला पहला, पहरा यगन हिवै कर बादा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाग चलाई, तारता राजी अंबर तोली, पिछे टंग चढ़ाई, एवड वदा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवे मन अंदर, करी पे आख कराई, जेवड़ साहेब तेवड़ दाती, दे दे करे रजाई, नानक नदर करे जिस उपर, सच नाम वड्याई। महला दूजा, आखने आख न रजिया, सुन न रजे कन, अखी देख न रजिया, गुण गाह के कवन, भुखिया भुख ना उतरै, गली भुख ना जाए, नानक भुखा तारजै, जा गुण कै गुणी समाए। पौड़ी विण सच्चे सब कूड़, कूड़ कमाई है, विण सच्चे कूड़ यार बन चलाई है, विण सच्चे तन शार शार लाई है, विण सच्चे सब भुख जे पैजै खाई है, विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है, कूड़ै लालच लग मैल खुवाई है, सब जग ठगे ओ ठग आई है जाई है, तन मैं तृष्णा अग शब्द बुझाई है। श्लोक महला पहला, नानक गुर संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान, रस रसिया हरिया सदा, पक्कै कर्म ध्यान, पत के साध खांदा लहै, दाना कै सिरदान। महला पहला, सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल, नानक कर्म होवे मुख मस्तक, लिखिया होवे लेख, आठ सठ तीर्थ गुर की चरणी, पूजे सदा वसेख, हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवे दजे नानका, तरिये कर्मी लग। पौड़ी, जीव दया मर मार न पछो ताई है, झूठा उस संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है, काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम परिये पाई है, गुर प्रसादी बोझ सच समाई है। श्लोक महला पहला, तुम्मी तुम्मा विस अकत तूरा, निम फल मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आवही, नानक कहिए किसो, हंडन करमा बाहरे। महला पहला, मत पंखेरू किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अकडाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है, साहेब लगी रीत। पौड़ी, केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना, खड़ दर्शन कह भेख किसे सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना, मन्ने नाम बिसंख दरगे पावना, खालक कहो आदेश ढाडी गावना, नानक जुग जुग एक मन वसावना। श्लोक महला दूजा, मंत्री होए अठू हे आ, नांगी लगे जाए, अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए, हुक्म पाया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यों मनमुख अड़े, डुबे हक ने आए, दुहा सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यो पाए, नानक ए वै जानी है, सब कित सहर जाए। महला दूजा, नानक परखे आप कहो ता पारख जान, रोग दारू दो वै बुझे ता वैत सुजान, वाट ना

मूल जान गल्ला करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास कहो क्यों पहुंचे बाण अगे यो आगम है वाहे दड़ जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया करण भगत दिन रात ना रहनी वारिया महिला मंज निवास सब सवारिया सच कहन अरदास सेवे चारिया सोहन खसमे पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया सब सवारियास अमृत पीविया श्लोक महला पहला मारू मिह ना त्रिपत्या अगी लह ना भुख राजा राज ना त्रिपत्या सायर परे किसको नानक सचे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह फलंग तस जनमस जावद ब्रह्म ना बिंदते सागरंग संसारस गुरप्रसादी तरह के कारण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसमै कै दरबार ढाडी वसया सचा खसम कलाण कमल विगसया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड़े मार सज्जन सरसया सच्चा सतगुर सेवनो सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल विधंसया ढाडी कथया काथो शब्द सवारया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खते कर नित खत्या विच पाहे तोते मूल न उतरै जे सौ तोवन पाहे नानक बख्से बख्सी नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिए सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरै जाए मनुख जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख्या लख सिर जनिहालिया उजड़ पुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पै विच जमै पै मरै पी पौ मन मैं होए नानक पै विच जे मरै सहला आया सोए महला तीजा पैवन जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैवन जे मरै मोहे काल उठ जाए पौड़ी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानी है सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणी है सतगुर होए दयाल ता जम का डर केहा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुर होए दयाल ता नव निध पाईए सतगुर होए दयाल ता सच समाईए श्लोक महला पहला सिर खोहाए पीए मलवाणी जूठा मंग मंग खाही फूल फदिहत

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामन कर मन लय सहा संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाना हाओ ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर

गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड़ियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पिछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला। जन्म मरे त्रैगुण हितकार, चारे वेद कथा आकार, तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला। अमृत काया रहै सुखाली, बाजी यो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया, हालत ना सोबा पलत ना टोई।

ताजी तुरकी सोई ना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किस न केरी। सुन मूर्ख मान्या जाना होग तिसै का पाना रहाओ शाओ हमारा ठाकुर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दल बिखम कना रहाओ उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। टाहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया पा गए से पंच जना।

जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरा गण महला पहला रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। नाम ना जान्या राम का मूड़े फिर पाछा पछता है रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत कौ चाहन जो गए से आए अंत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागट होए कर्मा उपर निबड़ै जे लूचै सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसै वडाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो। मैं बनजार न राम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाए मेरा सह मिले दर्शन रूपिया पार। मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उरवार पार मेरा सह बसे हो मिलोगी बहा पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागणी जन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय बिचारो तितकर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे नरपौ का सोहेला हों वारी जाओ जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिया नो देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया जो हवै सैब स्यो मेल। कार कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई मेरा प्रभु सब विद्या पे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पै राचै सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत ना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस जाखिया सहज सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी गुआरे री महला तीजा एक गावत रहे मन साध ना पाए हमै विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर भावै मंतन राता नाम सुहावै रहाओ एक गावै एक भगत करे नाम ना पावै बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पर राखिया सदा उतार भगत करै मूर्ख आप जनावै नच नच टपै बहुत दुख पावै नचै टपै भगत ना होए शब्द मरै भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनों बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ गुरम करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैंगल मिकदारा गुर अंकश मार जीवालन हारा मन या साध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुखे हो मन लिया सवार हमें विचों तजे विकार जो तुर राखिया नु मेल मिलाए कदे न विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरे री महला तीजा हाँ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना तंदा करत्या अंधन विहाना हिरदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जग चारे जाता हाँ मैं मार गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म विदाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए तावत वर जे ठाक रहाए नाम नामृत गुरते पाए हर कृपा ते हर वसै मन आए आराम राम करते आ सुख सांस शरीर अंतर वसै ना लागे जमपीर आपे साहेब आप वजीर नानक सेव सदा हर गुणी गहीर गौड़ी गुआरे री महला तीजा सो क्यों विसरै जिसके जी पुराना सो क्यों विसरै समाए समाना जित सेवै दरगह पथ परवाना हर के नाम विटो बल जाओ तू विसरै तद ही मर जाओ रहाओ तिन तू विसरै जे तुद आप भुलाए तिन तू विसरै जे दूजे पाए मन मुख अज्ञानी जो नी पाए जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए गुरमती हर नाम समाए जिन्ना पोतै पुन से ज्ञान बिचारी जिन्ना पोतै पुन तिन हम मैं मारी नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी गौड़ी गुआरे री महला तीजा तू अकथ क्यों कथिया जाहे गुर शब्द मार मन माए समाहे तेरे गुणा ने कीमत नहीं पाए जिसकी बाणी तिस माहे समाणी तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखाणी रहाओ जै सतगुर तै सतसंगत बनाई जै सतगुर सहजे हर गुण गाई जै सतगुर तहां हो मैं शब्द जलाई गुरमुख सेवा महली थाओ पाए गुरमुख अंतर हर नाम वसाए गुरमुख भगत हर नाम समाए आपे दात करे दातार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਏਕਸਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਭ ਸੈ ਲੰਗਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ ਏਕ ਅਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਸਹਿਜ ਭਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕਹਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਾਈ ਤਿਸਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਬੂਜੈ ਹਰ ਸੋਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੇਖੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨਾ ਕੋਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਜੈ ਜਨ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਅਸੰਤਾ ਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੂਜੈ ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਜੈ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਜੈ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਕਰ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਮਨ ਸਾਚੈ ਰਾਤੇ ਹਰਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਸਚਨਾਮ ਸਮਾਹੋ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयांदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भोजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरी री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

जब गुर मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

हम जारे राम के हर वणज करावै दे रासरे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जिहै वणज हर लाया फल ते हा तिन पाया। हर हर वणज सो जन करे।

साबित तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मोहले बोले गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिंदी सो चेतना आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करै, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट विहाजिया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बारक, हर प्रभ की है आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखै चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार संभाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखै रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किश हाथ है, सब वसगत है हर केरी। त्यों संत जना की नर निंदा करे, हर राखै पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी कै किश हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले छाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कही है, मन की दुबदा बिन सजाए, हर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ। कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा, इश्पुनी जन केरिया, ले सतगुर धूरा। हर भगत दृढ़ावे, हर भगत सुने, ते सतगुर मिलिए, तोटा मूल ना आवई, हर लाभ ने दृढ़ी है, जिसको हृदय विगास है, पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरै, हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी, हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरा मंत्र मुख हर बोली, गुरमुख रंग पया तगूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ। करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब ज्योत सबाई, हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग कै, अपरंपर पुरख्या तोली, हर हर प्रगट कियो गुरपूरै, सिर वेचियो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम सरनागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली।

गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा। जग जीवन या परंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन तन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामै नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिनसे, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते। दुरमत मैल गई सब तिन की, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप प्रभ ठाकर, तुम जे वड़े अवर ना दाते। जन नानक नाम लए ता जीवै, हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करो कृपा जग जीवन दाते। मेरा मन हर सेती रचे, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे। राम मेरा मंतन बेद लियो हर साचे, जेह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया। गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ। जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते सागत मूड नर काचे। तिनको जन्म मरण अत भारी, विचविष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक, मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे, मन निरत करे करनाचे। आपे सह वड्डे प्र स्वामी, हमन जारे हैं ताचे। मेरा मंतन जियो राज सब तेरी, जन नानके सह प्रभ साचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख भंजन, एक बिनो सुनो दे काने। जिसते तुम हर जाने स्वामी, सो सतगुर मेल मेरा प्राने। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूड मुग्ध अशुद्ध मत होते। गुर सतगुर के बचन हर हम जाने रहाओ। जितने रस अन रस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मेरे सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया, ते सगद मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोहे पहचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। कहो किथे हर पौ नसी है, हर आपे बगसले प्रभ साचा। हर आप छाए छुट्टी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सतगुर की सरनाई भज पाओ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाओ। मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुखदाता, जित सेवे नि कर वसीए। गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीए। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लाहा हर मन हसीए। हर हर आप दया कर देवै, ता अमृत हर रस चखीए। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते सागत नर जम कुटिए। ते सागत चोर जिन्ना नाम विसारिया, मन तिनकै निकट न पिटिए। मेरे मन सेवो लख निरंजन नर हर, जित सेवे आ लेखा छुटिए। जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल न कटिए। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै। मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो हर दर्श दिखावो। मेरा मंतन लोच कनेरी,

जो हमरा मनचित है स्वामी साबे तुम्हार जानो मेरी आन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाता पंथ बताया हर मिलिया आए प्रमेरी आन दिन अंध पया वडभागी सब आस पुजी जन केरी जगनाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुमा खिन ना टिके बहुरंगी दह दह दिस चल चल हांडे गुरपूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरा मस्तक दा दगाना हम करज गुरु बहु सांडे पर उपकार पुन बहु किया पौदुतर तार परांडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्भ गलाडे हम जानिया कछु न जाने आगे ज्यों हर राख है त्यों ठांडे हम भूल चूक गुर कृपा धारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मन साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडाओत पुन वड्डा है रहाओ साक्त हरा साधना जानिया तनंतर हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुबै दुख पावै जमकाल सहै सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है के साधना पावे तीठा हर दीन दयाला नगरो किया हर गुर सबदी चख डीठा राम हर कीर्तन गुरले मीठा रहाओ हर अगमा गोचर पार ब्रह्म है मिल सतगुर लाग बसीठा जिन गुर भजन सुखा नहीं हरै तिन आगै अण परीठा मनमुख हियरा अत कठोर है तने अंतरकार करीठा बिसियर कहो बहु दूध पी आई है बिख निकसै फूल फुलीठा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु कस गरड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुर दाता नाम दड़ाया मुख मस्तक पाग सुपागे राम गुरमत हर लेव लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लेव लागे हम मंतन देवो काट गुरु कहो मेरा परम पव गुर बचनी भागे अंधियारे दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञाना देरा बिनस बिनासियो कर वस्त लही मन जागे साकत बद्धक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे सीसना बेचिया ओए आवे जाया भागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लजपात गुरु है सिर बेचियो सतगुरे आगे गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिलिया आप गवाया हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया राम गुर

मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगै, जिन विछड़िया हर गल आया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन कहो, गुर हिरदे नाल दिखाया, सहजानंद भया मन मोरै, गुरे आगै आप विचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै सबदा नहद, गुरमत मनुआ गावे, वडभागी गुर दर्शन पाया, तन धन गुरु लिवलावै, गुरमुख हर लिवलावै, रहाओ। हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावै, हम मलमल तोवै पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावै। हृदय गुरमत राम रसायण, जेवा हर गुण गावै, मन रसक रसक हर रसिया गाने, फिर बहुर ना पूख लगावै। कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे, बिन कृपा नाम ना पावै, जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावै। जप नाम करमा, मत माता मत जियो, नाम मुख रामा, संतोख पिता कर, गुरपुरख्या जन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलया, रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा, सदा निर्वाणी जियो, वडभागी मिल सुगण सुजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग भिन्ना, आवो संतो मिल नाम जपाहा, वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियाड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करीहा जियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठ टोल टोल मिलिया जियो। मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो, मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो, हर विटड़ियो सदा कोले जियो। वस मेरे प्यारिया, वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो, मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख विगस जियो। हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अनदिन अनदर हस जियो, हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा, नित लै लाहा मन हस जियो। हर आपो पाए हर आपे वेख, हर आपे कार लाया जियो, एक खावे बख्स तोट ना आवे, एक ना फुका पाया जियो, एक राजे तख्त बह नित सुखिए, एक ना पिख मंगाया जियो, सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो, हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपूरा लख लखाही जियो, हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दाल दो दुख लह जाही जियो,

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गवन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात तू

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, गुरप्रसाद नाम मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, अमृत गुण उचरै प्रभाणी, पूरे गुर की सुमत प्राणी, प्रभ सिमरत कुशल सब पाए, घर बाहर सुख सह सुबाए, रहाओ सोई पछाता जनै उपाया, कर कृपा प्रभ आप मिलाया, बह पकड़ो लीनो करे अपना, हर हर कथा सदा जप जपना, मंत्र तंत्र औखद पुनै चार, हर हर नाम जी प्राण आधार, साचा तर पायो हर रंग, दुत्तर तरे साध कै संग, सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खटियो जाका नाहे सुमार, जिसै प्राप्त तिस गुरदे, नानक बिरथा कोई नाहे, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां, हस पुनीत होए तत्काल, बिनस जाए माया जंजाल, रसना रमो राम गुण नीत, सुख पावो मेरे पाई मीत, लिख लेखण कागद मसवाणी, राम नाम

गाम, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मन हर चरण कही जय, कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावै साचा दरबार। गौड़ी महला पंजवा, जा का मीत सजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी रहाओ, जा कहो रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो, जा का कहया दरगह चले, सो किसको नजर लाया वै तले, जा का सब हिता का होए, नानक ता कहो सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवा, जा कै दुख सुख सम कर जापै, ताको काड़ा कहां ब्यापै, सहजर अंदर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय। रहाओ जा कै चिंत वसै मन आए, ताको चिंता कतहू नाहे, जा कै बिरस्यो मन ते भरमा, ता कै कछु नाही डर जमा, जा कै हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ता कै सगल निदाना। गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन मैं थाना, गुरप्रसाद किने वर लै जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त तिसलै पुंचा, रहाओ अनहत बाणी थान निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला, तै सहजा खारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता। हर ख्यानंत सोग नहीं बिया, सो घर गुर नानक कौ दिया। गौड़ी महला पंजवा, कवन रूप तेरा आरा दो, कवन जो काया लेसा दो, कवन गुण जो तुझ लै गावो, कवन बोल पार ब्रह्म रिझावो, रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बेद जित भव जल तरो, कवन तप जित तपिया होए, कवन सो नाम हम मैं मल खोए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल कहाल, जिस कर कृपा सदगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन्ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, आपन तन नहीं जा को गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सदगुर ते पायो। रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया, तिसका सब किश जिसका हर राया। गौड़ी महला पंजवा, गुर के चरण उपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, सतगुर अपने कहो कुर्बानी, आत्म चीन परम रंगमानी। रहाओ चरण रेण गुर की मुख लागी, अहम बोतन सगल त्यागी, गुर का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा, गुर सुखदाता गुर करतार, जी प्राण नान गुर आधार। गौड़ी महला पंजवा, रे मन मेरे

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात,

सह सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, भले दिनस

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए। साध कै संग किलबिक सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए। तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे। कौड़ी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा। दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान। जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही।

कोट बिगन हेरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे। पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खोतास। रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जा कर दैवसै भगवान। औखद मंत्र तंत सब शार, करने हर दे मैं तार। ताज सब परम पजो पार ब्रह्म, कहो नानक टाल्यो धर्म। गौड़ी महला पंजवा, कर कृपा भेटे गुर सोई। तित बल रोग ना व्यापै कोई, राम रमण तरन पै सागर। सरन सूर फारे जमकागर। रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पय काम। जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पय सहाई। मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा, बिखै राजते अंदला भारी। दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई। माया मगन नरक लै जाई। रहाओ रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ। चरण कमर स्यो लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत। सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे। कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए। सर्व कला पूर्ण प्रभु सोए। रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभु खिन मैं पारो तारण हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर कीर्ति।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवां, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रांबिन से गाए गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जाके सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभृदय निवास। सगल दुख का होया नास, आसा मान तान तन एक। साचे साह की मन में टेक, महागरीब जन साध्या नाथ। नानक प्रभ राखे दे हाथ, गौड़ी महला पंजवां। हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबिख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवां, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते, पै पंजन प्रभ माना बसाही। डरपत डरपत जन बहुत जाही, रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम। सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जसवास। सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक। नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी महला पंजवां। बाहर राख्यो हृदय समाल, घर आए गोविंद लै नाल। हर हर नाम संतन कै संग, मंत्र राता राम कै रंग। रहाओ गुरप्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबिख सब हिरिया। सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवां, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही। कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे। प्रभ सेवा जम लगे नानेरे, सो वड़ पागी ने।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जाप, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवां, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाई है,

आनंद खेम पया कुशल घर आए पेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस गोविंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जनकी कीनी आप सहाय सुख पाया लगदा सह पाए आप गया ता आपै पए कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जपाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इसनान लाख अरब खरब दीनो दान जामन वस्यो हर को नाम सगल पवित गुण गाय गोपाल पाप मिटाय साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तब साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आराधे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ से मन माने आगाध बोध हर अगम्या पारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानको प्रभ कृपा तहरे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुरुदेव बसाया गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा तिसे अराध मेरा मन धीरा रहाओ।

की ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते तीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया जीत लै ओए महा बेखादी, सहज सोहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अवनासी राया, निरपव संग तुम्हारे बसते, एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक महल तू हुए अफारो, एक महल निमानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित भगता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल कशु ना लेता। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पिख करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजियाने। अनक कोठरी बहुत पात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे महल राखे तैसे रहना, क्या हो करे विचारा। जिन किश किया सोई जाने, जिन ए सब बिसाजी, कहो नानक परंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ, उर्ज रहे ओरे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ। रहाओ जो जाने तू अपने का जय, सो संग ना चाले तेरे तसुआ, ना गोवायो नांग सिदासी, फेर फिरियो अर काल ग्रसुआ। पेख पेख रे कसुंब की लीला, राच माच तिनहू लव हसुआ, शीजत डोर दिन सर रैनी, जी को काज न कीनो कछुआ। करत करत इवि बिरधानो, हार्यो उगते तनखी नसुआ, ज्यो मोयो उन मोनी बाला, उसते कटे नाही रुचसुआ। जग ऐसा मोय गुरै दिखायो, तव शरण पर्यो तज गर्भसुआ। मार्ग प्रभ को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा, तुझ

बोले, वर्ण ना साकाऊं तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते, भ्रम पौ काट किए नह केवल जबते हम मारी, जन्म मरण कहो चूको सहसा, साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया, गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कमनरी जावे तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही, रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोरै, सर्व माया ठाकर तेरी दोही, पतत पावन ठाकर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान त्यान नानक वड्याई, संत तेरे स्यों गाल गलोही, गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया, रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है, देहो दर्स हर राया, सोई होवा जो तिस पाणा, यवरना किन्हीं कीता, तुमरै पाणे परम मोहे मोहया, जागत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो, साध संगत कै पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बाछे, गौड़ी महला पंजवा, होता कै बलिहारी, जा कै केवल नाम आधारी, रहाओ महिमा ता की केत गनिए, जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज अनंत ना संग, उन समसर अवर नाम दाते, जगत उदारण से ही आए, जो जन दर्स प्यासा, उनके उनकी शरण पर ऐसो तरिया, संत संग पूर्ण आसा, ता कै चरण परो ता जीवा, जन कै संग निहाला, भगतन की ऋण होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला, राज जोबन आवाद जो दिसै, सब केश युग मैं काटिया, नाम निदान सद नवतन निर्मल, एहो नानक हर तन खाटिया, गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुर ते, मोको सतगुर शब्द बुझायो, रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया, निमख निमख नमस्कारा, दिख्या गुर की मुंद्रा कानी, दृढ़ो एक निरंकारा, पंच चेले मिल पए एकत्रा, एक सकै वस किए, दस बैराग ने आज्ञाकारी, तब निर्मल योगी थिए, परम जराए चराई विभूता, पंथ एक कर पेखिया, सहज सूख सो कीनी भूता, जो ठाकर मस्तक लेखिया, जै पौ नाही तहां आसन बांधियो, सिंगी अनहत बानी, तत विचार डंडा कर राखियो, जुगत नाम मन पानी, ऐसा योगी वडभागी पेटै, माया के बंधन काटै, सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटै, गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल त्याय ले मीता, हर औखद जा को गुर दिया, ताके निर्मल चीता, रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते, गुर शब्द दीपक प्रगासा, भ्रम की जाली ताकी काटी, जा को साध संगत विश्वासा, तारी ले पवजल तारू बिखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होई मन की आसा, गुर पेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया, मन तां तृप्तिया गाए, नानक हर जियो तां को देवै, जां को हुक्म मनाए, गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहया ना शरण प्रभ तोरी, अंध कू मैं हाथ दे राखो, कछु सियाणप उगत न मोरी, रहाओ करन करावन सब किस तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मठो मथोरी,
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਤੁਮ ਪ੍ਰਵਰਾਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੋਰੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਚੰਨ ਚਕੋਰੀ ਆਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਐ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਵਾ ਆਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਨਰਮੋਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰਾਥਿਆ ਪਾਰ ਅਤੂਚੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਦੋਹਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸੰਗੋਰੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ

तुम पूर्ण पुरख विधाते राखो सरना ना दीन कहो करो हमारी गाते तरण सागर बोध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते ते पार पराते ईत ऊत प्रभ सम तुम समर्था सबके तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे निर्गुणी आरे कहो गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा सही समायो देव जाको सदगुर पै दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मंत्र बतया अन पै ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुख ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम भूज सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई पल मानो।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओठ तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाध। पय कृपाल गुसाइयां।

गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माझ महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहाओ। राम गोबिंद जपिंदिया, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारी, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे जीविए, भव जल पइए पार, मिल साधु संग उधार होए, मुखी उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माझ महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ रहाओ। होर साध सब फिकया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधिया, उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान, नानक जाचक दर।

सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पछाना, उस्त निंदा दो त्यागै खोजै पद।

एक बिन सै एक अस्थिर मन अचरज लखियो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथिया रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमखना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो, ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, ता सो नेहु ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो, जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नहन, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोहतर रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया, नदर पई बिगठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हर स्यों लागया। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया।

दृष्ट भई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय न देखो मीत, किस सेवो किस देव चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या पूजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम भुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर ब्याप रया निठाई। उस्त कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुवै खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्या ने सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सहि सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्या गै कवरे, पाए मिलाए सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामने हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है। हाँ मैं जाए

पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे गुरु।

सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पूले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरे अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है निश्चल कोय ना दिसे संसार है अफरियो काल कूड़ सिर मारे निश्चल एक सच्चा सज सोई जिनकर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी शेख पेख फकीरा वड्डे कहावे हम मैं तन पीरा काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा

आए नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कहो आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है, हरस माते सुख कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत् विरोले। सतगुर दीखिया दीख्या लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्राह्मणी। इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला। राम नाम

चेरी की सेवा करे, ठाकर नहीं दिसे, पोखर निर्विरुलिये, मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक चिन्ह आपका सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। अरा गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबै ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कै नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमै वारो वार। सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्म काल न खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो विकारा, गुरमुख पौज उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लग आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म तर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझाओ सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई। आवै जावै ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना। बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई। गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे वड्याई। सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई।

है, गुर के शब्द पंच संघार है, आप तरह सगले कुल तार है, माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिबलाई, बहुते पेख करे पेख धारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई, माया मोहे अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बहरागी, गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवै सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मो प्यासा, त्रैगुण भरमे नाही निकर वासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, आंदन भगत हर नाम दृढ़ाया, रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत ना चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम बिसारे।

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगती मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन कर हला गुर मन्या, गुरमुख कार कुमाए, गुर आगे

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारे, सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुरशब्द विचारे, गुरशब्द विचारे हो मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा तन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहीऐ अमृत गहीऐ दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण हो ना फिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एक शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित ने उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रैन सुख सुती जियो अंतरे और तारे, अंतरे और तारे मिलिए प्यारे। अनदिन दुख निवारे अंतर महल प्रदावे, कामण गुरमति विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागण गुर कह त्या पारे।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता आप गुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो, घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए, नामो बीजै नामो जमै नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जा चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो, आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रहे लिव लाए। नामे उपजै नामे बिरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजै किनै सुख ना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए, परम पुलाए ओह क्यों कर सुख पाए। चाकरी वडाणी खरी दुखाली, आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाहीं खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुरसबदी चित लाए। मन मुख मुक्त गवार पिराजियो, शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुर पाए मन मुखे आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चित लाए, जिसनो हर जियो।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद्ध गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रवरया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साधु सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपे सुनो आपे सुख आसनो, आपे सुनो तो आप ही जासनो। आपने आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखमो आपे अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कत न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेखर ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोय कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत्युत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप देवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझे सो प्रभ सधु संग लेखे गण

हरारा रंगो या मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना, हरे रे दरगह कह ना को, आओ बैठ आदर सुब देउ, ओआ महली पावे तू बासा, जन्म मरण होए बिनासा, मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै सलोक, लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध, लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद, पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते, अहम बुद्ध माया मदमाते, या माया

भुवन हार हो सदया वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना नान गुरमुख हरार ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जा सरसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जबत मन होए आनंद बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो तिसै त्याग सुख सहजे सोउ। यैया जाए परो संत सरना जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोउ एक नाम ले मने प्रोउ। यैया जन्म ना हारिया गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरव तास कहो जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का का